0: வணக்கம், ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, ஜெய் ஜனேந்திர, சஸ்ரீ அகால், சுப்ரபாத், நமஸ்கார், சென்னை. ஆப் சுன் ரஹே ஹே MOP at 107.8 ஆர் கம்யூனிட்டி ஆர் ரேடியோ ஆப் ரைட். ஆஜ் ஹம் BSc எலக்ட்ரானிக் மீடியா கி சாத்ராயே ஆப்கோ ஸ்வதந்திர பாரத் மே நாரி கா யோக்தான் கி விஷய மே பாத் கர்னே ஜா ரஹே ஹே. ஜப் நாரி மே சக்தி சாரி, ஃபிர் க்யூ நாரி ஹோ பிச்சாரி. ஆர்ஜே அஞ்சு இஸ் விஷய பர் சர்ச்சா ஆகே கரேகி.
1: தன்யவாத் ரிதி. மே ஆப் சபி கோ அபி மஹிலாவோ கி ஆஜாதி கே பாரே மே குச் கஹனா சாஹுங்கி. समाज में नारी और पुरुष दोनों का सम्मान महत्व है. जिस प्रकार एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसके लिए दोनों पहियों का ठीक होना आवश्यक है, वैसे ही समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और नारी की स्थिति सम्मान होनी आवश्यक है. दोनों में से यदि एक भी निर्बल है तो समाज की उन्नति सुचारू रूप से नहीं हो सकती. एक समय था जब भारत में नारी का स्थान बड़ा ही आदरणीय था. समाज के प्रत्येक कार्य में उसका सम्मान अधिकार था. पुरुष के समान ही सभा, उत्सव और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी. धार्मिक कार्य तो उसके सहयोग के बिना अपूर्ण ही माने जाते. कोई भी कार्य उसकी सम्मति के बिना नहीं होता था. पुरुष उसे मूर्ख समझकर उस पर अत्याचार नहीं करते थे. नारी भी अपना गौरव समझती थी और अपना चरित्र व आदर्श उत्तम रखने का प्रयत्न करती. देश में सीता और सावित्री जैसे देवियां हर घर में पाई जाती है. समाज में स्त्री शिक्षा का भी खूब प्रचार था. उस युग की नारी वास्तविक अर्थ में देवी थी. समाज के लिए उस युग की नारी गौरव की वस्तु थी. जहाँ नारी की पूजा होती है, आधार होता है, वह देवता विचरण करते हैं. इस प्रकार उस समय के संस्कृति साहित्य में नारी को बड़े ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखे जाने का वर्णन है. समय परिवर्तनशील है. देश में अनेक परिवर्तन हुए. अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां हुई. इन सबका प्रभाव नारी समाज पर भी पड़ा. मध्य युग में आकर नारी का आदर और सम्मान न रहा. पूजनीय और आदरणीय के स्थान पर वह अब केवल उपभोग की वस्तु रह गई. इधर देश की राजनीतिक स्थिति में भी महान परिवर्तन हो रहे थे. विदेशी आक्रमण प्रबल होते जा रहे थे. इन विदेशियों का देश की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा था. परिणाम, नारी पर अब अनेक ऐसे बंधन आ पड़े जिसकी कोई कल्पना न थी. उस पर अनेक सामाजिक बंधन लगने लगे. उसकी स्वतंत्रता अब केवल घर की चार दीवारी तक ही रह गई. अब वह समाज और साहित्य में केवल मनोरंजन की ही वस्तु रह गई. इस युग में जहां सामाजिक दृष्टि से अनेक बेदन लगे, वहाँ अब साहित्य में भी उसे नंदनीय और माया की कान कहा जाने लगा. जो नारी पहले जीवन सचरिय समझी जाती थी, वह नारी अब नर्क की खान समझी गई. कबीर तो तुलसी से भी दो कदम आगे बढ़कर नर समाज में नारी की निंदा के में संकोच नहीं करते. नारी का सम्मान करना एवं उसके हितों की रक्षा करना हमारे देश की सदियों पुरानी संस्कृति है. एक तरफ तो उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, तो दूसरी तरफ उसे बिचारी अबला की भी कहा जाता है. इन दोनों की अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई है. प्राचीन काल से ही नारी को इंसान के रूप में देखने के प्रयास संभवत कम ही हुई है. पुरुष के बराबर स्थान एवं अधिकारों की मांग ने भी उसे अत्यधिक छला है. अतः वह आज तक मानवी का स्थान प्राप्त करने से भी वंचित रही है.
2: अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, जैसे लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ और दुर्गा माँ जैसे जैसे जहाँ रूप धारण करती है और सर्वगुण संपन्न है, वैसे ही हम सब नारियों को अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन करना ही आज़ादी कहलाता है. जैसे भारत के इतिहास में झांसी की रानी से लेकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक, सभी नारी शक्ति अपने और इस देश के आज़ादी ही के लिए बहुत कुछ किए. इनके लक्ष्य कदम पर ही चल के हम नारियों को भी एक नया इतिहास बुलंद करना है.
1: नारी एक शक्ति है.
2: शास्त्रों में उस भगवान शिव की शक्ति अतः शिव भक्ति कहा गया है। आज की नारी पुरुषों से किसी मामले में पीछे नहीं है। आज नारी न तो अबला है और न ही उसे पैरों की जूती कहा जा सकता है। आज की नारी अपने पैरों के ऊपर खड़ी हुई है, पुरुष की आश्रित नहीं है, बल्कि कभी परिचारिका बनकर और कभी कार्यशेष्ट्र की सहयोगिनी बनकर वह पुरुष वर्ग की मदद ही करती रहती है। यदि नारी चलत या अपवित्र होती तो भारतवासी मंदिरों में दुर्गा, स्नतोपि, वैष्णवों आदि पूज्य देवियों की इतनी आधारणा क्यों करते? मंदिरों की देवियाँ भी तो आखिरकार नारियाँ ही हैं, देवी शिव शक्तियाँ हैं। वास्तव में महिलाएं अथवा नारियाँ घृणा और अपमान के योग्य नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सम्मान की पात्र है। आज युग ने फिर से नहीं करवट ली है और स्त्रियों के संबंध में लोगों की धारणाएं एवं मान्यता बदली है। महिलाओं के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वह जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। अभी मैं आप सभी को नारी शक्ति के पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नारी तेरी नारित्व नहीं किसी का मोहताज, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती, तू ही माया, तू महामाया, तुझ में यह सृष्टि समाया, तुझे कोई समझ ना पाया, नरदेव दानव और गंधर्व सबको चाहिए तेरा वर, फिर तुम क्यों इतना लचर। नारी तेरी नारित्व नहीं किसी का मोहताज, तू माँ है, तू ही बहन, तू ही पत्नी, तू ही प्रेमिका, हर सफल पुरुष के पीछे तेरी वाणी और वर्द हस्त है, फिर तू क्यों इतना अस्त व्यस्त है। तू अपनी शक्ति को पहचान, नरेंद्र का करे तेरा बखान, नारी तेरे नारित्व नहीं किसी का मोहताज।
3: नमस्ते।
4: नमस्ते।
3: आपका नाम?
4: करिश्मा।
3: करिश्मा आप क्या करते हो?
4: मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती हूँ। हम मतलब कमर्शियल इवेंट्स करते हैं, प्लेस करते हैं, मतलब थिएटर जो करते हैं ना, ड्रामा वो करते हैं, और क्या मतलब बहुत सारे अदर दूसरे शोज वगैरह करते हैं हम।
3: अच्छा, तो करिश्मा आज हम नारी के स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी सोच क्या है?
4: नारी की स्वतंत्रता में मतलब अभी नारियों को स्वतंत्रता मिली नहीं है। बहुत जने बोलते हैं कि नहीं, बहुत लड़कियां यू नो स्वतंत्र हैं, उनको बहुत सारा फ्रीडम है बाहर आने जाने को, इस वक्त पे आना, इस वक्त पे जाना, ये सब अभी भी है, कई जगह पे होता है। कई लड़कियों को अभी यू नो सवेरे जाना, शाम को मतलब घर आ जाना, ये पूरी रिस्ट्रिक्शन सब है। बहुत थोड़ों को मिल चुकी है, थोड़ों को नहीं मिली है। यहाँ पे चेन्नई में हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे लड़कियों को एक स्वतंत्रता मतलब एक हद तक मिली है, लेकिन अभी है, और बहुत सारे गाँव और बहुत सारे जहाँ जहाँ नारी को मतलब काम भी नहीं करने देते हैं, बस शाम ढले तो वापस आ जाना घर, और किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जाना, दोस्तों से मिलना, ये मतलब वहाँ पे अलाउड ही नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत आराम से हो रहा है। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आ रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस हैं जो आगे आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बट मतलब बातें बहुत चल रही हैं कि नारी की स्वतंत्रता चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आगे आते हैं इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन बातों से खत्म हो जाती है। अभी बातों के पार भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती हैं हमें, और स्वतंत्रता के लिए लड़ना है तो मतलब हमारे देश को तो मिल गया, लेकिन हमें अभी नहीं मिला है कि मैं ऐसा ही कुछ सोचती हूँ कि अभी नहीं मिला हमें। हमें अभी स्वतंत्रता चाहिए तो हमको ही लड़ना पड़ेगा, हमें बात करना पड़ेगा इसके बारे में।
3: अच्छा, तो करिश्मा हाँ, आपको ऐसा लगता है क्या कि गांव में और टाउन्स में या लाइक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में, इन तीनों जगह में ऐसा कुछ डिफरेंस है कि गांव में लड़कियों को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलता है और टाउन्स में कंपैरेटिवली ज़रा ठीक ठीक है? आई मीन लड़कियां काम पे जाती हैं, कोई कोई एक्ट्रेस बनते हैं, पॉलिटिक्स में रहते हैं, और यूएस में आप देखोगे तो एक बच्ची जो कि 13-14 साल की है उसको भी बहुत सारा फ्रीडम है, ऐसा क्यों होता है?
4: वो लोगों के विचारों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि गांव में जो रहती हैं उनके विचार बहुत ही मतलब पीछे हैं अभी। वो लोग सोचते हैं कि नारी को घर में रहना चाहिए, यू नो लड़की है तो बहुत बहुत यू नो केयरफुल रहते हैं कि बहुत सिक्योर करना पड़ता है। उनके उनके माइंड के ऊपर है, वो जो सोचते हैं उनके ऊपर है। गाँव में लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे चेन्नई टाउन में एक हद तक ओके ठीक है, क्योंकि लड़कियां अभी आ रही हैं, बाहर काम करने जाना है, बाहर जाना है, तो थोड़ा थोड़ा अभी वो लोग को थोड़ा यू नो स्वतंत्रता मिल रही है उनको। और यूएस उनके मतलब उनकी सोच ही अलग है, वहां पे बच्चों को भी अकेला सोना पड़ता है, वहां पे इंडिपेंडेंट होना सिखाते हैं। तो हम सबके विचारों के ऊपर है, हम कैसे देते हैं जो फ्रीडम है लड़कियों को, सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। लड़की अब घर में रहे भी तो जो होना है वो होना है, बाहर जाए भी तो जो होना है वो होना ही है। तो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है जो उनको दे रही है फ्रीडम और किस हद तक फ्रीडम दे रहे हैं।
3: अच्छा करिश्मा, तो अभी हमें ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि इस देश की लड़कियां स्त्रियां इस स्वतंत्रता का यू नो ढंग से प्रयोग करते हैं या गलत रास्ते पे जाते हैं, और इससे क्या क्या हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है?
4: अगर ये पूछेंगे तो वापस मैं यही बोलूंगी कि एक के ऊपर, एक विचार के ऊपर, उनके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रीडम अभी दिया है तो मतलब ये उसका मतलब नहीं है कि उसको गलत रास्ते पे यू नो यूज करो, फ्रेंड्स के साथ जाओ, गलत काम करो। मतलब यू नो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो ये बहुत ही जो नॉट नीडेड करके जो भी आदतें होती हैं वो पड़ जाती हैं, वैसे फ्रीडम नहीं चाहिए। वो उन स्त्रियों के कारण बाकी स्त्रियों को भी फ्रीडम नहीं मिलता बाहर जाने का, जिनको बाहर जाना पड़ता है। और हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम वो फ्रीडम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ढंग से यूज करो तो हमारे अच्छा होगा, लड़कियों को और फ्रीडम मिलेगी। अगर हमने ढंग से यूज नहीं किया तो बाहर जाने में बेचने में तो सोचेंगे, थोड़ी भी फ्रीडम देने में सोचेंगे।
3: अच्छा करिश्मा, तो आप कह रही हैं कि अभी तक इंडिया में एटलीस्ट चेन्नई में स्त्रियों को यू नो पूरा फुल फ्लेज फ्रीडम नहीं मिला है, तो आप क्या बोलना चाहती हैं कि इस फ्रीडम न मिलने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा क्या है जो स्त्री कर नहीं पा रही है, या जो ऑलरेडी, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े लोग आगे बढ़ चुके हैं लेकिन ये फ्रीडम पूरी तरह से न मिलने के कारण ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाई, आपको ऐसा कुछ लगता है?
4: मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बाहर आना है, जिनको काम करना है, जिनको आगे पढ़ना है, तो अभी फ्रीडम नहीं मिली। कई सारी मतलब परिवार हैं जहां पे यू नो लोगों को, उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता कि लड़कियां बाहर जाएं, रात रात तक काम करें, लेट शिफ्ट पे रहें, ये सब उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। मतलब कॉलेज जाते ही बस अभी शादी करके रख देते हैं। अभी भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, मेरे खुद के लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि फ्रीडम अभी और चाहिए लड़कियों को बाहर भेजें, काम करने दें, उनके सपने को साकार करें और उनको जो करना है उसकी फ्रीडम उनको दें, क्योंकि उनको जो करना है उसकी फ्रीडम उनको देंगे तो वो लोग घर में झगड़े कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होंगी, मतलब कई हद तक कम होंगी प्रॉब्लम्स, अगर उनको जो चाहिए वो दे दिया तो।
3: अच्छा करिश्मा, और एक सवाल है, जब आपके माता पिता थे तब भी उस लेवल पे भी देयर वाज अ लिटिल फ्रीडम गिवन, लेकिन जब आप टीनेजर थी या जब आप काम करना चाहती थी तब आपको भी फ्रीडम दिया गया था, और अभी आपके घर में बहन भाई होंगे जिनको भी फ्रीडम दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या डिफरेंस है? मैं क्या एक्चुअली द थिंग इज 1960s और ले लीजिए 1960s 2000s एंड प्रेजेंट 2015, क्या आपको लगता है कि फ्रीडम का लेवल बड़ा है या वहीं पर रुका हुआ है?
4: बहुत ही बदलाव आया है, मतलब लोगों की सोच में भी, पहले जैसे नहीं है अभी। 1960s में जमाना ही अलग था, वहाँ वो तो जैसे कैसे रूल्स बने हुए थे कि लड़कियों को ऐसे रहना है, लड़कियों को किचन में रहना है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ना नहीं है, लड़कियों की शादी इस उम्र में हो जानी चाहिए। लेकिन टाइम बढ़ते बढ़ते हमारे बात करते करते स्त्रियां खुद लड़ लड़के बाहर आई हैं अभी आराम से। 1960s में जो था वो तो सबका माइंड सेट ही वही था कि औरतों को ऐसे रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब 90s आया, जब 2000 आया, तब तो बहुत बदलाव आया, क्योंकि लड़कियों को भी इक्वली करना था, लड़कों के इक्वल रहना था, उनको भी मतलब कॉलेज जाना था, शादी नहीं करनी थी जल्दी, अपने उनके भी कुछ सपने होते हैं जो उनको साकार करने थे। तो बहुत बदलाव आ चुका है। मैं मतलब जब मेरे मतलब मेरी जब ग्रैंड मॉम मेरी मॉम जब जब थी तब उनका फ्रीडम कुछ अलग था, उनको फ्रीडम मिलता भी नहीं था, उनके दोस्तों के साथ भी बाहर जाने का अलाउड नहीं था, तो उनकी सोच पे निर्भर करता था फिर। लेकिन अब जब मेरे टाइम पे मुझे काफी फ्रीडम मिला, वही है ना, जो फ्रीडम आप जैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करेगा। आप ढंग से यूज करो तो आपके पेरेंट्स भी आपको विश्वास करेंगे और ढंग से मतलब बाहर भी भेजेंगे, आप अपने सपने भी साकार कर सकते हो। और अभी 2015 में तो बहुत ही फ्रीडम है, जैसे मैं बोलती हूँ कि लोगों की सोच के ऊपर ही निर्भर करता है फिर से, क्योंकि अब अगर आप लगता है आपको ठीक है, आपको लग रहा है वो फ्रीडम ढंग से यूज कर रही है तो आप भेजो बाहर, नहीं तो वो फ्रीडम नहीं मिलेगा किसी को भी। लेकिन अब जितना फ्रीडम है मतलब काफी हद तक बढ़ चुका है और आगे भी इसे मतलब 2016-2025 तक तो बहुत ही फ्रीडम आ जाएगा, बहुत ही यू नो एक यूके यूएस कल्चर हम फॉलो करने लग जाएंगे कि बस एक लेटर सा छोड़ जाओ कि मैं इधर जा रही हूँ वहां पे जा रही हूँ।
3: तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का फ्रीडम लड़कियों को भी जरूर मिलना चाहिए? और ऐसा भी होता है कभी कभी कि थोड़े थोड़े जगह में जैसे गैंग रेप हो जाए या किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये भी कारण फ्रीडम का ही है, या ये आप सोचती हैं कि ये फ्रीडम दो या ना हो ये तो जरूर होगा क्योंकि लोग ऐसे हैं इस दुनिया में?
4: बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही बोलूंगी मैं भी। फ्रीडम की वजह से नहीं है ये लोगों के मतलब विचार हैं जो वो सोचते हैं, और जो होना है वो तो होना ही है। मतलब आप एक हद तक ही संभाल सकते हो जो भी होना, आप वही बोल रही ना, फ्रीडम जो है आप ढंग से यूज करो उसको, अपनी अपनी बुद्धि से यूज करो। दिया होता ये नहीं कि कहीं भी जाओ, कैसे भी रहो, कैसे भी मतलब कपड़े पहनो, कुछ भी करो, मतलब ये सब नहीं रहना चाहिए। वही मैं बोल रही हूँ, ढंग से यूज करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा सब कुछ।
3: अच्छा करिश्मा, तो हम जो भी जितने भी इसके बारे में बात किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीडम के साथ सेफ्टी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की नाइट शिफ्ट में जाए या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाए, लड़कियों को भी हक है कि वो जाए अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर मिले चले एंड ऑल दैट, तो इसके साथ सेफ्टी भी आनी चाहिए। और सेफ्टी तभी आएगी जब हमारे दुनिया में लोग इसको यू नो स्त्रियों के स्वतंत्रता के ऊपर इम्पोर्टेंस देंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको यू नो प्रोटेस्ट करना चाहिए या लोगों को कंप्लेन एक्चुअली करना चाहिए? क्योंकि ऐसे बहुत सारे गैंग रेप्स होते हैं या कुछ गलत भी होता है तो बहुत सारे लोग डर से आगे आते नहीं है, वो बोलते भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है इस सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: बहुत कुछ हो रहा है जैसे आप कह रही हैं लेडीज, यू नो मोलेस्टेशन बहुत होता है, बहुत अब्यूजिव होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो एक साइड में है। प्रोटेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि कोई फायदा नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब सब कुछ होने के बाद प्रोटेस्ट करो या कुछ भी करो, उसके बाद तो कुछ होगा नहीं, जो होना था तो वो तो हो चुका है ना, उसके बाद प्रोटेस्ट करके क्या फायदा। अपनी अब फ्रीडम के साथ हमको सेफ्टी आनी है तो वो हम के ऊपर ही है, हम हमारे ऊपर ही है, वो हम कैसे सेफ हो, हमको मतलब हम अपने आप को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हम मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। बहुत सारे अब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे यू नो सिखाते हैं, वो सीख लो। अपने मतलब कोई औजार है तो जो आप यूज कर सकें वो रख लो, मतलब मैं ये चाकू वाकू नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ जैसे वो पेपर स्प्रे वगैरह आते हैं वो सब रख लो अपने बचाव में, नहीं तो जाओ ही मत। घर में बोल के जाओ जहां भी जा रहे हो, सेफ रहो। फोन में अब नंबर, फोन में हमेशा चार्ज रखो, सबको बोल के जाओ, जो जहां भी मिलने जा रहे हो, जो भी जगह जा रहे हो बोल के जाओ कि मैं इधर जा रही हूँ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स के साथ ही आप बाहर जा रहे हो बोल के जा सकते हो, ये जरूरी है कि जहां भी जा रहे हो बोल के जाओ, उनको इन्फॉर्म्ड रखो कि आप जा रहे हो, यहां जा रहे हो, क्योंकि उनको कोई तो मतलब आइडिया मिलेगा कि आप कहां गए हो, क्या मतलब हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत तो उनको हेल्प मिलेगी कि हाँ ठीक है यहां गई थी, ये कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत तो उनको यू नो हेल्प गाइडेंस मिलेगा उनको।
3: थैंक यू करिश्मा, आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बातचीत किए। आई होप कि हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को आपके बातों पर यू नो उससे आगे बढ़ेंगे, अपने सेफ्टी मेजर्स और इम्प्रूव करेंगे, और जो माँ बाप या जो रिलेटिव्स अपने लड़कियों बच्चों को अपना फ्रीडम नहीं देते हैं और उनके सपने को साकार नहीं करने देते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं लड़कियों को, कभी कभी किसी किसी घर में पढ़ाई भी नहीं करने देते हैं, आई होप ये सब इम्प्रूव हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत धन्यवाद, मैं भी यही चाहती हूँ कि अभी लड़कियों को अपना फ्रीडम दें और सही ढंग से दें और सब कुछ सही हो जाए, सभी अपना फ्रीडम ढंग से यूज करें। धन्यवाद।
0: हर आंगन की शोभा नारी, उससे ही बसे दुनिया प्यारी। अब आपको नमिता कुछ उदाहरण देने वाली है कि कैसे कुछ स्त्रियाँ जिंदगी में मुश्किल पार करके कुछ हासिल किए हैं।
5: धन्यवाद रिद्धि। आज के युग में स्त्री की स्वतंत्रता अनिवार्य है। पहले के समय स्त्रियां चार दीवारों के बीच कैद रहती थी, परंतु आज का युग ऐसा नहीं है। आज के युग में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज के युग में स्त्रियां हवाई जहाज चलाती है, पुलिस का कार्य करती है, यही नहीं वह ऊंचे उदे पदों में है। इसका एक उदाहरण इंदिरा गांधी, किरण बेड़ी, सरोजिनी नायडू इत्यादि है। यही कारण है आज के युग में पुरुषों का दबाव स्त्रियों का नहीं है। दहेज के बिना लोग पढ़ी लिखी लड़की को लड़के बिना हिचस शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के युग में लड़कियां और स्त्रियां स्वतंत्र है, उन पर किसी का दबाव नहीं है।
6: नमिता ने हमें सरोजिनी नायडू का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया। अब लाजवंती हमें कुछ और स्लोगन सुनाएगी जो नारी शक्ति के बारे में है।
7: धन्यवाद रिधि। अब मैं लाजवंती आपको नारी शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप लोगों को नियुक्त करने लग जाओ तो उनको प्यार करने का समय ही नहीं मिलेगा। हम गुनहगार औरतें हैं जो बेचती अपनी जिंदगी है, जो झुकाती अपना सर है, जो जोड़ती हाथ है, जो झूठ के पुलिंदों के खिलाफ उठाए हैं परचम सत्य का। फूल रहे ना धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम कैसे वंश बढ़ाओगे। इन पंक्तियों पे कभी विचार किया है? नहीं किया तो अभी करो, अब भी देर नहीं हुई है। सुनो नारियां, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, लगाओ हाथ की सूरज सुबह निकला करे, हथेलियों में भरे धूप और उजाला करे। उफक के पांव रखो और चलो अकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले।
6: भारत का एक सपना है कि इस धरती की हर नारी को सम्मान मिले। कुछ नारियां इस सपने को पूरा करने में जुड़ गई हैं। अक्षया आपको उन लोगों के बारे में बताएगी।
8: धन्यवाद आरजे रिद्धि। मैं हूँ आज की नारी, आत्मविश्वास मेरी पहचान। आज की नारी का सफर चुनौती भरा जरूर है, पर आज उसमें चुनौतियों से लड़ना का साहस आ गया है। अपने आत्मविश्वास के बल पर आज वह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज की नारी आर्थिक व मानसिक रूप से आत्मनिर्भर है। चुनौतियों का हंसकर स्वागत करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। अपनी जिंदगी को अपनी हाथ में लेकर महत्वपूर्ण फैसले स्वयं कर रही है। परिवार व अपने काम दोनों के तालमेल बैठाती नारी का कौशल वाकई काबिले तारीफ है। किसी की शिकायत का मौका नहीं देने वाली नारी आज अपनी काबिलियत और साहस के बूते पर कामयाबी के मुकाम तक पहुंची है। मैं हूं आज की नारी, आत्मविश्वास मेरी पहचान। मैं आज कंगना रनौत, मेरी कॉम और इंदिरा नोई के बारे में बताने वाली हूँ। कंगना रनौत। कंगना हरियाणा के छोटे से गांव से है। सफलता की इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसने काफी संघर्ष किया। उसके माता पिता ने उसे इस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत विरोध किया था, पर उसके अटल विचारों और पूर्ण निष्ठा से काम करने के जज्बे ने उसे सफलता के इस शिखर पर पहुंचाया। इस क्षेत्र में होने के बावजूद उसने अपनी सोच को दूषित नहीं होने दिया और समाज में एक उदाहरण के रूप में दिखाई दी। उसने अपने जीवन में गोरे होने के कई क्रीमों के विज्ञापन में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि चाहे गोरे हो या काले, वह आपका प्राकृतिक रूप है और आपको उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन छोटी छोटी बातों से पता चलता है कि नारी शक्ति का एक बढ़िया उदाहरण कंगना रनौत है। मेरी कॉम। मेरी कॉम मणिपुर से है। उसे बचपन से ही बॉक्सिंग का बहुत शौक था। वह बचपन में लड़कों से भिड़ने के लिए निकल पड़ती थी। उसकी इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। जब उसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की तब उसके माता पिता ने उससे परेशान होकर उसकी शादी करा दी। शादी के बाद बच्चे होने के कारण उसके अपने काम से 2 साल तक रुकना पड़ा। बच्चे होने के बावजूद उनके दृढ़ निष्ठा और कुछ कर दिखाने की इच्छा के कारण वह आज ओलंपिक्स में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इंदिरा नोई। इंदिरा नोई तमिलनाडु से है। वो पेप्सी कॉर्पोरेशंस की सीईओ है। यह हमारे समाज के लिए एक उदाहरण है कि अगर कोई महिला समाज में अपना नाम प्रतिष्ठित करना चाहती है हो तो कोई भी रुकावट उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक सकती।
9: इन सभी उदाहरणों से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो, अगर आपका विचार बुलंद हो तो अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति के नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
6: अक्षया ने हमें इंदिरा नूई, कंगना रनौत और मेरी कॉम के बारे में बताया। हमें इन महिलाओं से प्रेरित होना चाहिए। अब हमें कामना बताएंगी कि कैसे नारी समय के साथ चल रही है, जो नारी थी पहले और जो नारी है अब।
10: धन्यवाद रिद्धि। महिलाओं को हमेशा ही भारतवर्ष में आदर सम्मान दिया गया है और दिया जाता है, चाहे वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या दीदी या नानी हो। घर गृहस्थी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी एक औरत के हाथ में होती है। घर में एकता बनाए रखने का काम भी औरतों का ही होता है। यह सब शुरू हुआ क्योंकि महिलाएं हमेशा ही घर में रहती थी। खाना बनाना, बच्चों को और घर के बुजुर्गों को देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े अपने हाथों से धोना, यह सब काम करते करते समय कहाँ बिताते या पता ही नहीं चलता था। घर के सब काम को महिलाएं ही करती थी। घर के बाहर सब कार्य को पुरुष संभालते थे। औरतों को घर से बाहर काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई करने की भी इजाज़त नहीं मिलती। बहुत कम महिलाएं कॉलेज जाकर पढ़ाई करती थी। लड़कियों का घर में ही घर के काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि शादी के बाद वह अपने ससुराल में जाकर अपना घर ठीक से संभाल सके। धीरे धीरे समय के साथ लड़कियों को भी कॉलेज की पढ़ाई के लिए भेजा गया। अच्छी तरह पढ़ने के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह स्कूलों में अध्यापिका की नौकरी करने लगी। इससे महिलाओं को और भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा। घर की आमदनी भी बढ़ने लगी। कुछ पढ़ी लिखी औरतों अपने पति के व्यापार में भी मदद करने लगी। घर में बैठकर कपड़े सीने व एम्ब्रॉयडरी करने, यह सब शुरू हो गया। औरतों की हिम्मत बढ़ने लगी। उन्हें लगा वह सब पैसा कमा कर घर की सहायता कर सकती है। पुरुषों में भी बदलाव आना शुरू हो गया। माँ बाप भी अब चाहते हैं कि उनकी लड़की खूब पढ़े, ताकि आगे वह अपने बच्चों को पढ़ा सके। समय जो मिलता है उसका सदुपयोग करे। बाजार में धीरे धीरे कई तरह के मशीनें आने लगे, जिससे घर के काम आसान होने लग गया। औरतों के पास काफी समय होता था। घर में बैठकर अपना समय फालतू की गपशप में नहीं बिताना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। घर के काम के बाद वह बाहर जाकर नौकरी करने लगी। सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ काम करती है, बहुत मेहनत करती है, उन पर विश्वास किया जाता है। भगवान ने हर एक औरत को इतना मजबूत बनाया है, घर के काम और बाहर के काम बखूबी के साथ निभाती है, आदमियों के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर चलती है। संसार में अब तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची है।
6: औरत एक माँ है, एक बेटी, एक बहन और एक पत्नी का रूप निभाती है। औरत अपना घर छोड़ के परायों का घर सवारने जाती है। अब रिद्धि जेठ हमें एक कविता सुनाएगी।
11: मैं नारी सदियों से स्व अस्तित्व की खोज में फिरती हूँ मारी मारी, कोई ना मुझको माने, जन सब ने समझा व्यक्तिगत धन, जनक के घर में कन्या धन, दान दे मुझको किया अर्पण, जब जन्मी मुझको समझा कर्ज, दानी बन अपना निभाया फर्ज, साथ में कुछ उपहार दिए, अपने सब कर्ज उतार दिए, सौंप दिया किसी को जीवन, कन्या से बन गई पत्नी धन, समझा जहाँ पैरों की धूल, अवांछित जो क्यों कोई खाना बासी, जब चाहा मुझको अपनाया, मन न माना तो ठुकराया, मेरी चाहत को भुला दिया, कांटों की सेज पे सुला दिया, मार दी मेरी हर चाहत, हर क्षण ही होती रही आहत। माँ बनकर जब मैंने जाना, थोड़ा तो खुद को पहचाना, फिर भी बन गई मैं मृत्यु धन, नहीं रहा कोई खुद का जीवन, जब चलती रही पर पथ अनजाना, बस गुमनामी में खो जाना, कोई आई थी सीता बनकर, पछताई रुचा कर लांगी क्या जग, एक सीमा मैंने, हर युग में मिले मुझे ताने, राधा बनकर मैं ही रोई, भटकी वन खोई खोई, कभी ना पांचली बनकर रोई, पतियों ने मर्यादा खोई, दाव पे मुझको लगा दिया, अपनी छोटापन दिखा दिया, मैं रोती रही चिल्लाती रही, पतिव्रता स्वयं को बताती रही, भरी सभा में बैठे पांच पति की गई मेरी ऐसी दुर्गति, नहीं किसी का पुष्टव जगा, बस मुझ पर ही कलंक लगा, फिर बन आई झांसी रानी, नारी से बन गई मर्दानी, अब गीत मेरे सब गाते हैं, किससे लिख से के सुनाते हैं, मैंने तो उठा लिया बीड़ा, पर नहीं दिखी मेरी पीड़ा, न देखा मैंने स्व यौवन, विधवापन में खोया बचपन, न माँ बनी न मैं माँ बनकर, सोई कांटों की सेज जाकर, हर युग ने मुझको तरसाया, भावना ने मुझे मेरी बहकाया, कभी कटु कभी भी मैं बेचारी, हर युग में मैं भटकी नारी, हर युग में मैं भटकी नारी।
12: धन्य हो तुम माँ सीता, तुमने नारी का मन जीता, बढ़ाया था तुमने पहला कदम, जीवन भर मिला तुम्हें बस कम, पर नहीं राह तो दिखला दी, नारी को आजादी सिखला दी, थोड़ा था तुमने एक बंधन, और बदल दिया नारी जीवन, तुमने ही नव पथ दिखलाया, नारी का परिचय करवाया, तुमने ही दिया नारी को नाम, है माँ तुझे मेरा प्रणाम।
6: धन्यवाद रिद्धि, तुमने हमें एक बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। अब हम नारी शक्ति के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अक्षया, आप हमें बताइए कि क्या आपको फर्क लगता है कि आपके घर वाले आपके और अपने भाई के बीच में फर्क रखते हैं?
13: जरूर फर्क रखते हैं। मेरे भाई को बाहर पढ़ने के लिए भेजे थे, तब जब मेरी बारी आई मुझे रोका गया था।
6: धन्यवाद अक्षया। अब अंजू, हमें बताइए कि आपकी प्रेरणा कौन है, आपको किस औरत से प्रेरणा मिलती है?
13: मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि मैंने उनको अपने बचपन से देखा है कि वह हर चीज में अपना समझौता करती है, हमारे लिए वो हर चीज छोड़ देती है जो उनको भी पसंद आता है।
6: धन्यवाद अंजू। तो लाजवंती, अब आप हमें बताइए, आपके हिसाब से नारी की क्या स्थिति है इस हमारे देश में?
14: नारी आज भी उतनी ही पीछे रह सकती है जितनी पहले थी। नारी बढ़ना चाहती है आगे और बढ़ भी रही है, पर आजकल कई घरों में ऐसा भी हो रहा है कि उन्हें घूंघट ओढ़ना पड़ता है, सास ससुर की बातें सुननी पड़ती है, काम करना पड़ता है, इसके विरुद्ध उनको कदम लेना चाहिए।
6: धन्यवाद लाजवंती। तो कामना, आप बताइए, यूएस से आई है आप, तो आपको क्या फर्क लगता है, वहाँ क्या है नारियों की स्थिति और यहाँ क्या है नारियों की स्थिति हमारे देश में, क्या आपको कोई फर्क लगता है?
15: मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ, वहाँ सब महिलाएं अपने आप रहते हैं, आदमियों पर डिपेंड नहीं करते हैं, वहाँ सब कैसे बोलती हूँ, वी ऑल यूज्ड टू डू आवर चोर्स बाय आवरसेल्व्स एंड वी नेवर डिपेंडेड ऑन एनीबॉडी, एंड इंडिया में सब लोग महिलाओं के सब प्रेशर डालते हैं और इतना इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं और आज़ादी नहीं देते हैं, तो यूएस और इंडिया से इतना फर्क है।
6: तो अब रिद्धि, आप कुछ सोल्यूशन बता सकती है कि कैसे हम नारियों को और प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके, और दूसरी देशों में जैसे नारियां बहुत आगे बढ़ रही है, हमारे देश में भी नारियां वैसे ही बढ़े और उस मकाम तक पहुंच पाए?
11: इस चीज के लिए हमारे समाज को थोड़ा अपनी सोच को बदलना होगा, जैसे कि नारियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने देना चाहिए, जैसे कि बाहर देशों में होता है, पर यहाँ बहुत कम ये चीज़ होती है, और बच्चों से काम भी करवाया जाता है, जैसे लड़कियों से भी बहुत काम करवाया जाता है, उनकी शादी भी करवाई जाती है कभी कभार छोटे में, जैसे वैसे ही
16: पर ये सब बाहर देशों में नहीं होता, इसलिए ये चीज हमें बंद करनी होगी पहले भारत में, फिर आगे जाके आगे बढ़ सकती है औरतें।
6: थैंक यू रिद्धि। तो आज ऐसे हमने देखा कि नारियां आगे बढ़ रही है, पर तो भी कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत बाधाएं हैं जहां नारियों को इतनी आज़ादी नहीं मिलती है जितना उन्हें मिलनी चाहिए। ये बात तो सच है कि पुराने जमाने से अब थोड़ा स्थिति थोड़ी बेहतर है, पर तो भी हम और आगे बढ़ सकते हैं जिससे नारी अपनी पहचान बना सकती है। तो आप सब अब हमें मुझे बताइए कि क्या आप लोग कुछ करना चाहेंगे जिससे नारियों की स्थिति अच्छी हो सके, उनको अपना अधिकार मिल सके, उनको अपने सपने पूरे करने का एक मौका मिल सके, क्या आप लोग कुछ करना चाहेंगी?
17: एक संस्था खोलना चाहूंगी, क्या अंजू मेरे साथ दोगे?
18: हाँ, मैं जरूर अक्षा के साथ दूंगी।
6: लाजवंती, अब आप हमें बताइए।
19: मैं भी साथ देना चाहूंगी और जहाँ कहीं भी नारी के साथ कुछ गलत हो रहा हो उसे जरूर रोकूंगी।
16: हाँ, मैं भी कुछ करना चाहूंगी और ऐसा कुछ जिससे नारियों की शक्ति हमेशा बनी रहे और कोई उन्हें दबा ना सके कभी भी, जैसे कि पुलिस ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
6: ये तो बड़ी अच्छी सोच है रिद्धि। कामना, आप कुछ करना चाहेंगी?
20: बाहर जो लड़कियों के लिए अधिकार मिलता है वो मैं अपने भारत के लिए लाना चाहूंगी।
6: तो जैसा आपने देखा कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, पर बस थोड़ी सोच बदलने की देरी है और हमारा देश आगे बहुत बढ़ सकता है अगर हमारी स्त्रियों को एक मौका मिल सके तो।
21: नारी शक्ति जिंदाबाद।